वाकया मैं जिसने सोचूं कर दिया कि ताया को अपना पहले का सुनी है धारणा नहीं है तजाक तका एक घर बहड़ी है मंदा किसने को पर खरी भूजिए मोर को

और चक लगे चक्र जितने किसने पाए, हम किसने अब जो कुछ न खाए, हंस में करे बराबर सिर गर्त अंदर पाए भजू।

प्रभुता के पर आप सत्य आप एकनाथ विच जिहिया तुरे चढ़े विसार आप कराए करे आप कैसो करी पुकार नानक ना जी।

कर वेखो मन विचार मन मुख मैल न उतरै जिचर गुरी शब्द न करी प्यार। जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते अवगुण हमारे दया करहो किछ मेहर उपाव डूबदे पत्थर तारे जीड़ा अगन बराबर तपै पीतर वगै काती परणवत नानक हुकम पछाणे सुख होवै दिन राती। सो कोटल गुरु सेवियन सुसहज सुभाय दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाय सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटी है तुद दिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है तुद दिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सतनाम वाहे गुरु साहिब जीओ वडहंस महला तीजा अमृत नाम सद मीठा लगा गुरु शब्दी साध आया सच्ची बाणी सहज समाणी हर जीओ मन वसाया अमृत नाम सद मीठा लगा गुरु शब्दी साध आया सच्ची बाणी सहज समाणी

पूरै सतगुर हर नाम त्याया रहाओ। ब्रह्म वेद बाणी प्रगासी माया मोह पसारा महादेव ज्ञानी वरतै कर अपने तामस बहुत अहंकारा। किसन सदा अवतारी रुदा

जिन गुरु न देखियो न कियो ते अकेअथ संसार में बेशुमार अथा अगणत अतुल ज्यों बुलावो त्यों

नानक दास बुलाए जुग जुग अटल दीन और दुनी दे मालक सर्व रे कायनात दे सांझे रहबर गुरुआं के गुरु पीरां दे पीर धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी तिन्हां दी पावन और मुबारक हजूरी अंदर गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पावन स्थाना उपर जुड़मिल बैठे गुरु प्यार वाले सतगुरु जी ने अपार बख्शिश कृपा वरताई है। जो अपने पावन चरणा कमलां पास जुड़ के बैठन दा सुभाग सतगुरु गुरु बाबा जी ने बख्शिश कीता है, आओ गुरु प्यार वालियो जो तन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन बाणी दियां लड़ीवार विचारां रोजाना आप संगतां इन्हां पावन स्थानां तों सरवण कर दियां हो, वो चल रही लड़ीवार गुरबाणी विचारां दे नाल सांझ पाईए। विचारां दी आरंभता तो पहला सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब जी कृपा करन अपना रहमत भरिया हथ सर ते रखण। सतगुरु आप रसना उत्ते वरत के पावन शब्द और गुरबाणी दी विचार सतगुरु आप करवा लैण। आप सरबत संगत असीस बख्शो। कोई रसना सखनी ना रहे। दोवें हाथ जोड़ अपनिया मन बिरतियां एकाग्र करदे हां। लवाओ गुरु चरणा विच हाजरी। अदब सहित सरबत संगत मिल करके उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। एक बार फिर करो रसनावां पवित्र और मिलके आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु

इति और मायामोह पसारा। कहते समा मिलिया तो पढ़ के वेखियो माया ने किवें प्रभाव पाया। फिर अगली गल गुरु साहब कहते महादेव ज्ञानी वरता है, ज्ञानवान वरत आख्या ना बड़े ज्ञानवान है, पर अगे घर अपने अपने घर दे विच तामस बहुत हंकारा। हंकार की दा अंग है तमो गुण दा, तामस तमा, जिहड़ी तमा सी ते हंकार सी उह नहीं छड सके भावें ज्ञानी वरतै, ज्ञानवान होके वरतदे रहे। संसार ज्ञानी कहिंदा रहा, बड़ा ज्ञानवान आख्या गया। दे अपने आप विच मस्त रहे, पर अपने आप विच मस्त रहिंदिया होया भी अपना गुस्सा ते हंकार नहीं छड सके। महादेव ज्ञानी वरतै। हुण तुसीं देव पुरशां दे विच वेख लो, जो सब तो वध कोई खौफ खांदा है तो की दे तो दे, जेडे मनन वाले ने मानता रखन वाले ने डर दे की दे तो ने भी किते तांडव रूप च ना आ जाण। जे क्रोधित हो गए तो साहिब कहिंदे महादेव ज्ञानी वरतै, घर अपना तमस बहुत हंकारा, अहंकार नहीं छुटिया, तमस तमा क्रोध नहीं छुटिया, उवें ही रहा। देखो जी धन गुरु कलगीधर साहब का जीवन साढ़े सामने है। सानू साडे परिवार तो नेड़े कोई नहीं, ते जे परिवार तो सब तो नेड़े की गल करिए ते औलाद, औलाद तो नेड़े कोई नहीं। अपनियां जिंदगियां च असीं ये कहने भी साडी औलाद वल किसे ने अख चुक के भी वेख्या ते ही उन्हूं ज्यौंदा नहीं छड्डांगे। जे कोई साडी औलाद नूं झिड़क भी मार दे ते अहीं उहदे नाल लड़ पैने भी तूं झिड़किया क्यों, तूं उच्ची आवाज च बोलिया क्यों, क्योंकि साडे अंदर तमस है, क्रोध है। गुरु कलगीधर साहब दे चारे सपुत्र दो अखां सामने शहीद होए, दोवां दी वार्ता कन्नां नाल सुनी है, पर चेहरे उत्ते क्रोध नहीं दिसे, क्रोध नहीं दिसे, मोह भी नहीं दिसे। जे मोह हुंदा फिर तोड़ दिंदे जी। हुण सानू कोई कह दे भी तू अपने औलाद नूं अपने पुत्र नूं पाई जंग च तोड़ दे, तेरे कोल दो ने तू एक रख ला ते एक तोड़ दे ते आपां तोड़ दांगे, नहीं। तेरे पुत्र नूं अज मारन वास्ते लैके चले ने, कुछ लजाण दवांगे, कहांगे ना भी जिन्ना चिर अहीं जिउंदे आ उन्ना चिर नहीं जाण दिंदे, नहीं लैके जाण देना। ते उह ते बापू अपने हथीं तोड़ रहा भी जा भाई, मतलब तमो गुण तो उपर। जदों शब्द का आसरा मन कोल होएगा फिर तमो गुण नहीं होएगा। इसलिए सतगुरु ने सानू शब्द का सहारा दिता, वो तेरे मन नू धीरज आवे। तुसी किते इतिहास पढ़ के वेखो जी, गुरु साहिबाना दा ते गुरसिखां दा जिन्हां कोल बाणी दा पहरा है, मन कोल बाणी दा आसर है, अपनियां अखां सामने मावां ने अपने पुत नेजियां च परवो ले, गलां च हार पवा ले, पर अपनी जुबानों ए नहीं सी कहा भी तुहाडा कख ना रहे। फिर भी शुक्र किहदा कीता, गुरु दा। ते ए शब्द जुबानों कहने वह भी उदों जदों गल दे विच पिता दे गल दे विच मां दे पुत्र दे शरीर दे टुकड़िया दा हार पाया होवे, ते मां आखे सतगुरु दिन तुहाडी रजा च सुखां नाल गुजरिया, ये आसरा कहदा है जी। मां दे गल विच
ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੋਟ

श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी।

दंडौत वंदन अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हाथ सो कहो टल गुर सेवी है एनस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए।

हर किया सदा सदा वडियाइया देना पछोताए। ए मन हर जीत्याए तू एक मन एक चित पाए।

0: बस न होवे।
1: जिसकी वस्त्र तिस आज्ञा रखे प्रभु की आज्ञा माने माथे।
0: उसके चौगुण करे निहाल नान साय सदा दया।
1: अनिक भात माया के हेत सर पर होवे।

0: को रख मन माहे
1: प्रसाद सुगंधत लावे तिसको सिमरत परम गत पावे
0: ही प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे ध्याए सदा मन
1: ये प्रसाद रसन सुख बसनाय पर सिमरो तिस रसना
0: ही प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा ध्याए ध्यान
1: ये प्रसाद पाठ पटंबर डावे तिसे त्यागत अवर लुभावे
0: ही प्रसाद सुख से सोई जय मन आठ पैर ताका जस का
1: प्रसाद सबको माने मुक्ता को जस

0: सम्मानी
1: साध के संग गोचर मिले, साध के संग सदा पर फूले,
0: साध के संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा,
1: साध संगो सब की रेन, साध के संग मनोहर।

0: निस्तारे।
1: साधु के संशोधन पावे जिस दंते सबको बरसावे।
0: सासंग धर्म राय करे सेवा साधक संग शोभा सुरुदेवा।
1: साधु के

0: पार ब्रह्म साध रिद बस नानक उदर साध सुन रस
1: साध के संग सुनो हर नाम साध संग हर के गुण गाओ
0: साध के संग न मनते बिसर साध संग सर पर निस्तर
1: साध के संग लगे प्रमिठा साधु के संग कट कट डीठा
0: साध संग भया

0: ज्योतिष भावे सोई करावे,
1: अद्वैता सब खिले जोस पावे सोई करे,
0: अनजानत बिखिया मह रचै जे जानत अपन आप बचै,
1: पर मे मुल्ला दैन पावे निम कमाई।

0: ऊर्धावे त्रिपत्नावे माया पाचे
1: अनुभवे
0: संतोक नहीं को राजे सुपन मनोरथ पीरते सब
1: का।

0: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दुर्गा मिले सजाए।
1: संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी न मरे न जीवाई है।
0: संत के दुखी की पुजे न आसा, संत का दुखी उठ चले निरासा।
1: संत का दुख न

0: उसका कुंभ विस्कोए उसका नवरा कंठ परोए
1: सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघन न लागे कोए
0: मन में कंठंकार कर्म मेरे सत व्यवहार
1: निर्मल रसनामृत पी

0: सुभाए होवे सो होए करने हार पछाने
1: सोए मीट लगाना जैसा सत सदिष्टाना
0: उपजे तिस माहे समाए ओए सुख निधान।

0: जनक जनक सद का
1: बोलूं जस जेहि बा दिन रात प्रभु अपने जन की नीता
0: प्रजा तुम के चाहे प्रभु अपने सोरे समा
1: जो होवा हो वसो जाने प्रभु अपने का हुकम पहचाने
0: मां कौन बखानो सका गुण का एक न जानो
1: हाथ पैर प्रभु से हजूरे

0: कछ ना जनावे हर हर नाम हृदय सध्या
1: मन बेते सतगुर के पास तिस सेवक के कार्य रास
0: वह करत होए नह कामी तिसको होत प्रापस
1: अपनी कृपा जी आप करे नानक सो सेवक गुर की मत ले
0: बीस बिस्वे गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की
1: गर्जा सतगुर की सिद्धि।

0: से जन तृप्ता ने पूरन पूरक नहीं डोला
1: परे प्रेम रस रंग जीत जाओ सात के संग
0: परे शरण आन सब त्याग अंतर परगाश अंदी लिव लाग
1: भागी जपया प्रसोई नानक नाम रते सुख होए
0: सेवक की मनसा पूरी भई सतगुरु ते निर्मल।

0: भगत भाय तरिय संसार बिन भक्ति तन होसी
1: चार सुख निंदना बुढ़ जात पाए बिसरा
0: सकल दुख का हो वत नाश नानक नाम जपो गुंता
1: उजी प्री प्रेम रचाओ मंत्र अंतर स्वाहो
0: तर सुख होए मन भिक्षा साध चरण धोए
1: भजन की मंत्र रंग बिल्ला को पावे संग
0: एक बस्त दी जय कर्मया गुर पर

0: काष्पयाल सर्व लोक पूरन
1: पृथ्वी प्रभुतः पार्वनम जैसी आज्ञा तैसा कर्म
0: पानी बैसंतर माहे चार कुंट दै दिशे
1: समाहे नई कोठाओं गुर प्रसाद नानक सुख पाओ
0: पुराण सिमरत मैं देख ससी अर सूर नखत
1: बाणी प्रभु की सबको बोले आप डोल न कम हूं डोले
0: सर्व कला कर खेल खेल मोल ना पाई है गुण है
1: सर्व ज्योत मैं जाकी ज्योत हरि स्वामी अत
0: गुर प्रसाद भरम का नाश नानक तिन में यो
1: विसार संजना को पिखण सा ब्रह्म संजना के हृदय सब धर्म
0: जना सुन है शुभ वचन सर्व व्यापी राम संग रचन
1: जिन जाता दुखी रह सत वचन साधु सब के
0: जो जो होए सो ई सुख माने करण करावन हार प्रभु
1: अंतर बसे बार भी होई नानक दर्शन देख सामोई
0: आप सत किया सब सत तिस प्रभु ते सगली

0: मद अलिप्तो रहे जो किस कहना सुआपे
1: अग्यावे अग्याजाए नानक जापावे ताले समाई
0: इस्ते होए सुनाही बुरा हो रहे कहूं कि ने कछ
1: भला कर तू अनिकी अपे जन्ने अपने जी की
0: आप साच धारी सब साच ओत पोत

परम सम्मान योग गुरु रूप गुरु प्यारी सात संगत जीओ, आप जी बहुत ही वडभागे हो। जुगो जुग अटल चवर छतर तख दे मालक, राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान। ऐसे दीन दयाल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब दे पावन अस्थान ते जुड़ बैठे हो। आप सरबत संगत ने बहुत ही प्रेम भावना दे नाल श्री सुखमनी साहिब जी दी बाणी दे संगति रूप विच जाप कीते। आओ पावन बाणी दे दसवीं अष्टपदी दे पहले पदे दी विचार नाल जुड़न दा यतन करिए। विचारां दी आरंभता तो पहला दोवें हथ जोड़

कोई न जाने तुमरा उचेते सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी तुमते हो सो तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास।

दोहराम आज्ञा पय काल की, सब सिखन को हुक्म है। गुरु ग्रंथ जी माने जो प्रभु को मिल बोच है। राज करेगा खालसा, ख्वार हुए सब मिलेंगे, ख्वार हुए सब मिलेंगे। बोले सोनिहाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सोहिला राम गौड़ी की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जय कर कीर्त आखिया करते का हुए विचारो तित कर गावो सोहिला हंस वे सृजनहार तुम गावो मेरे निरपौ का सोहिला वारी सोहिले सदा सुख होए रहा नित नित जियड़ समाली अन देखेगा देवनहार तेरे दान कीमत न पवे तिस दाते कवन सुमार संगत साह

यह सुख मांगे मुख कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

संतोख समाचरयो, बिमल बुद्ध सत गुर समाणो, आजुनी संभवयो, सो जस कल कवि अनबखाणयो, गुर नानक अंगद वरयो, गुर अंगद अमर निधान, गुर रामदास अर्जुन वरयो, पारस परस परमान, सद जीवन अर्जुन अमोल, आजो नी संभो, पै पंजन पर दुख निवार, अपार अनंभो, अगह गहन प्रम प्रात दहन, शीतल सुख दातो, असंभो उद्वयो, पुरख पूरन विधातो, नानक आद अंगद अमर, सतगुर

0: जय जयकार। जास जग अंदर मंदर भाग जुगत शिव रहता, गुरपुरा पायो बड़ भागी, लिव लागी में दन पर सहता। पै पंजन पर पीर निवारन, कल सहार तोहे जस बकता। कुल सोडी गुर रामदास तन, धर्म तुजा अर्जन हर भगता।
1: त्रम तीर गुरमत गंभीर, पर दुख बिसारण शब्द सार, हर सम उदार अहमेव निवारण। महादान सतगुर ज्ञान, मन चाओ न हुटे सतवंत, हर नाम मंत्र नवनिद ना निखुटे। गुर राम दास तन सर्ब में, सहज

जोग रस जान्यो पै निरपौ मान्यो लाख मह अलख लखायो अगम अगोचर गत गंभीर सतगुर पर चायो गुर पर चै परवान राज मह जोग कमायो धन धन गुर धन अपर सर सुपर परायो गुर गम प्रमाण अजर जरियो सर

रसना बदन बरदात अलख अपार गुर सूर शब्द हो मैं निवार्यो पंचा हरने दल्यो सुन सहज निज कर सहार्यो हर नाम लाग जग उदर्यो सत

जबलोनी भाग लीला रुदे तब लो भ्रमते फिरते बोतायो कल कोट समुंदर में बुढ़त थे कबहू मिटहै नीरे पछतायो तत विचार।

फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। कल समुंदर पे रूप प्रगट हर नाम उदाहरण, बसे संत जिस हृदय दुख दरिद्र निवारण। निर्मल भेख अपार तास बिन अवर ना कोई, मन बच जिन जानियो भयो ते संसार सोई। तरन गगन अवखंड में